के शो में हम सुनेंगे एक इंटरव्यू जो मैंने दिया था. जी हाँ, मैंने इंटरव्यू दिया था 2XXFM में एक दूसरे शो पे जिसकी होस्ट थी सोफी सिंह, और उन्होंने मुझसे मेरे बारे में पूछा और ACT देसी के बारे में पूछा और कैसे मेरी जर्नी रही है. ये इसलिए क्योंकि ACT देसी पार्ट ऑफ 2XXFM है जो सेलिब्रेट कर रहा है 50 साल, यानी कि 50 ईयर्स ऑफ 2XXFM, और उसमें बहुत सारे लोगों को जो ACT देसी की तरह ही पार्ट रहे हैं 2XXFM का, उनका इंटरव्यू किया गया है. और यही शो अलॉन्ग विद नेपाली प्रोग्राम होस्ट किया था सोफी सिंह ने फ्राइडे को, यानी आज मॉर्निंग में, और इसी को मैं रीरन कर रहा हूँ ताकि मेरी जो अपनी ऑडियंस है जो 2XXFM पे ACT देसी को सुनती है वो भी जाने मेरे साथ कि मेरा सफ़र आप सब लोगों के साथ कैसा रहा है सिंस 2019. आप हैं मेरे यानी आपके अपने देसी आरजे विकास के साथ, और ये है ACT देसी जो आता है हर शुक्रवार रात 8:30 इन कैनरा ओनली ऑन 2XXFM 98.3 पीपल पावर्ड रेडियो एंड हैप्पी 50 years of 2XXFM. Namaste, salam, sasrekaal, vadakkam.